0: हाँ जी
1: वो आर्शम वो डेट ऑफ बर्थ प्लीज.
0: Zero two zero eight 2007.
1: Denver.